0: दुखिया है दुखिया झन एक बेला पखाला लगे हैरान होने कह जाने होने के नगर्ने कहीं बिरामी भर कई मेलो मेसे भाई
1: बुआ चीज नगर्न झट्ट सुभाष मेडी को फर्मा में गई हालम यही बेसी सर को सेरा चोक देखी कारागार जाने बाटो छी जाम बरू
0: हुन्छ बुहारी लौ गइहालम साह्रै गाह्रो भयो
1: सुभाष मेडिको फर्मा बेसी सहर नगरपालिका आठ सेरा
2: यहाँ अनुभवी स्वास्थ्य कर्मी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै उचित परामर्श दिइन्छ सबै खाले औषधिमा विशेष छुटको व्यवस्था छ प्रोपाइटर सुभाष दनाई सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9845064093